0: तव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हांखे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8

साईं जा ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु असां बिजलीअ जी, त बिजली पंहिंजो ज़मीन जी हुजे या आसमानी हुजे, ॿिन्ही मां फ़ाइदो बि आहे त नुक़सान बि आहे। ऐं आसमानी बिजली जंहिंखे असां खिवण बि चऊं त असां हुनखे विझ बि सरींदा आहियूं, ऐं साईं मुंहिंजा विझ जेकॾहिं धरतीअ ते किरे त काफ़ी जानी ऐं माली नुक़सान बि थी पवंदो आहे। ऐं इहो वरी फ़ाइदो हूंदो आहे ख़ासि करे लोहरनि खे, जेके पंहिंजो उनखे वॾी कमी ईंदी आहे या बिजली विझ कमी ईंदी आहे, जेको हारी ऐं पोरत खे ॾाटनि कुहाड़नि ठपरण वेल विझ जो पाणी चवंदा आहिनि असां ॾींदा आहियूं, ऐं उहे तिखा औज़ार करे ॾींदा आहिनि ख़ासि करे अहिड़ा लोहर। अहिड़ी रीति धरतीअ वारी बिजली मां बि नुक़सान बि आहिनि त फ़ाइदा बि आहिनि। जेकॾहिं बिजली मौजूदु आहे त वॾा वॾा कारखाना, फैक्ट्रियूं ऐं मिलियूं वग़ैरह हलनि थियूं, ऐं जिन मां असांजे इस्तेमालु वारियूं शयूं ठहनि थियूं ऐं असांजे रोज़गार जो

हरियो बि बणजनि थियूं ऐं घरनि में ए सी हुजे, फ्रिज हुजे या ॿियो घणो कुझु बिजली ते हलाए असां पाण सभु फ़ाइदो हासिलु कंदा आहियूं। पर अॼुकल्ह बिजली नुक़सानकार बि बणिजी चुकी आहे। हिकु त बिजली आहे कोन, जेकॾहिं आहे त 24 कलाकनि में चंद कलाक बिजली हले पई, सा बि अखु बूट वारी। ऐं बिजली जा जॾहिं वरी बिल अचनि था त पाण खे ॻणती ॻारे छॾे थी त एॾा वॾा बिल ऐं बिजली अॼु हले कोन थी। त उन जे लाइ कोशिशि कयो त बिजली जी बचति कयो ऐं बिजली थोरी हलायो त पाण खे फ़ाइदो आहे, पंहिंजे बिजली जो बचति जो फ़ाइदो बि आहे पंहिंजे लाइ, पंहिंजे क़ौम जे लाइ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे
1: सिंधी ने माली साल जी 3500 अरब रुपयन का वधीक जी बजट आज पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़िमन जे पगारन में 10% रिटायर्ड मुलाज़िमन जी पेंशन में 7% वाध जी तजवीज। तरक्याती बजट में वडी कटौती, कुल तरक्याती बजट 1018 अरब रुपयन में घटाई, 720 अरब रुपया मुख्तस करण जी तजवीज। निज सूबाई तरक्याती बजट में 520 अरब में घटाए 385 अरब रुपया कई वही। गैर तरक्याती बजट 418 अरब रुपये की वही इजाफे से 2507 अरब रुपया करण की तजवीज। KTN न्यूज सिंध बजट जो मुकम्मल तफसील हथ कर वरता। दस्तावेजन मूजिब जिले की तरक्याती बजट 55 अरब रुपये में घटाए 15 अरब रुपया मुख्तस करण की तजवीज डिनी वही है। बोर मुतासर घर की मतामीर वे प्रोग्राम लाइ 97 अरब रुपया मुख्तस किया वह। गुडू बैराज जहा 11 सखर बैराज जहा 12 गेट तब्दील करण लाइ 12 अरब रुपया रखा वह। 1 अरब सिंध हुकूमत अदा कंदी, 11 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक का मिलना है। सेहत खाते लाइ 17 अरब 43 करोड़, तालीम शोबे लाइ 25 अरब 86 करोड़ रुपया रखा वह। सिंधी बजट में आबाशी खाते लाइ 30 अरब 80 करोड़, वर्कसन सर्विसेज खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख्तस किया वह। एमपीएस सिंध के एमएनएस जरिए मनसूबा देने वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाइ 29 अरब मुख्तस किया वह। कराची के 25 वडन मनसूबन लाइ 14 अरब 11 करोड़ रुपया खसूसी तौर से रखा वह। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 तहत 1300 नयू सीसीटीवी कैमराऊं लगाने लाइ 90 करोड़ रुपया मुख्तस। लाड़काने में 600 बिस्तर की अस्पताल की दावत लाइ 5 अरब रुपया रखने की तजवीज। 295 स्कूल्स के अपग्रेड करने लाइ 9 अरब रुपया रखा वह।

0: सिंध जे नए माली साल जी बजट में कचे वारे इलाकन में बुनियादी सहूलतूं ॾियण लाइ 1 अरब रुपया रखिया विया। रज़ाकाबाद वेझो नेशनल हाईवे ते हिकु ख़ासि मेडिकल कॉम्प्लेक्स क़ाइम करण लाइ 70 करोड़ रखण जी तजवीज़। मठियारी, सांगड़, डंडोलिया ज़िलनि में पाणी जी कुदरती ठोरनि जी बहाली लाइ 1 अरब रखिया विया। सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह नाणे वारे वज़ीर जी हैसियत में बजट पेश कंदो। बजट जी मंज़ूरी लाइ सिंध काबीना जो ख़सूसी इजलास अॼु तलब कयो वियो। एमक्यूएम बजट इजलास दौरान सख़्त एहतियात जो फ़ैसिलो करे वरितो। सिंध असेंबली जे इजलास दौरान सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बि सख़्त कया विया। ईरान सां मुआहिदो कामयाब थियणु घुर्जे। मुआहिदे जा नुक़्ता कुझु ॾींहनि अंदरि मीडिया आॾो पेश कंदुसि। अमरीकी सदर ट्रंप जे फ़रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ऐं UAE सदर शेख ज़ैद बिन अल नहयान सां धारदार मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवण हो त नओं मुआहिदो ईरान जे एटमी सलाहियत खे रोकींदो। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनम भरपा करे छॾींदासीं। ईरान रुकावट हो। हाणे इब्राहिमी मुआहिदे ते अगबराई लाइ राय हमवार थी वई। आबन हुरमत जुमे ॾींहुं खुली वेंदो। को बि टूल टैक्स न हूंदो। ईरान ख़बरदार कयो आहे त लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल मुआहिदो ख़तरे में पइजी वेंदो। हमिलो या कब्ज़ो मुआहिदे जी भञकड़ी हूंदो। इसराइल खे लबनान मां निकिरणो पवंदो। ईरानी पार्लियामेंटी स्पीकर बाकिर कालीबाज लबनानी हम मनसब सां टेलीफोनिक ते ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवण हो त लबनानी शहरनि जे घर ॾांहुं वापसी थियणु घुर्जे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो त अमरीका ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। मुआहिदे खे हथबी शकल ॾियण लाइ सालसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती मुआहिदे ते बाज़ाबता तौर ते अमल शुरूआती जुमे खां थींदी। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो चवण आहे त ईरान ख़िलाफ़ हिकु तरफ़ा फ़ैसिला मारण जो दौर ख़तम थी वियो। अमरीका खे पंहिंजी शर्तनि तहत ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते आणण ते मजबूर कयो। अमरीका ईरान मुआहिदे जा तफ़सील हासिल करण लाइ इसराइली दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। इसराइली मीडिया जो चवण आहे त ईरान सां मफ़ामती यादाश्त नामे ते पहुच लाइ इसराइल अमरीका खे बाज़ाबता तौर दरख़्वास्त कई हुई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10:15 a.m. This time check
1: is that. थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे तक खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो।

इंसान जी ज़िंदगी में लाज़िम मलज़ूम है, मगर मकसद रखण ऐं उन खे हासिल करण तमामु वॾी कामयाबी आहे। मक़सद लफ़्ज़ खे अगरि शरई या मज़हबी नुक़्ते नज़र खां ॾिसजे त उन लाइ नेकी या नेकमल लफ़्ज़ तमामु थोरो आहे। इंसान जी ज़िंदगी में

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: 11 बजे खां शाम 4 बजे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो।
2: होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो।

साईं मुंहिंजा दुनिया उम्मीद न आहे आरज़ुनि जी न पर हक़ीक़त जी जाइ आहे दुनिया में मरण जो ख़ौफ़ ऐं रिज़्क़ जो ग़म न कजे छो जो उहे कंहिं बि हालतुनि में पंहिंजे वक़्त ते असां वटि ज़रूरु पहुची वेंदा छो जो हीअ दुनिया दरियाउ आहे ऐं आख़िरत हुन जो किनारो आहे दरिया में तरंदड़ ॿेड़ी तकवा आहे त उन ॿेड़ी में सवार माण्हू मुसाफ़िर आहिनि जॾहिं दुनिया कंहिं ॾांहुं मुतवजो थींदी आहे त पोइ ॿियनि जूं चङायूं बि उन जे खाते में शामिलु करे छॾींदी आहे ऐं

सयूं जा कहीं भी निज़ाम के सवार ने बिगाड़ में असान जो ही किथे न किथे हथ बदल हों है असमां हर एक मानो पान मथा कूड़ बदयानती कढ़ी छे तो यकीन कयो दयानतदारी सच्चाई पांजो पान ही पैदा थी पवंदी असां चाहियूं त धोखे जी दीवार के ड्राए विझूं ऐं मोहब्बतन जा मीनार ऊंचा करे छॾियूं निज़ाम असां पाण जोड़ींदा आहियूं ऐं टोड़ींदा बि पाण आहियूं असां पंहिंजा तालुकात वधाईंदा बि आहियूं त वरी घटाईंदा बि आहियूं मुल्कनि जा मोती खिंडेरे मुल्की निज़ाम महकाए छॾण बि असां माहिर आहियूं उन शइ जा प्यार मुहबत करण जा बि असां माहिर आहियूं पर थी सघे थो असां निज़ाम खे सवारियूं ऐं बिगाड़ियूं न

जी हा, सभिनि प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा ऐं आख़िरी लम्हनि में प्रोग्राम रोशन सुबुह मां अव्हां खां मोकिलियूं पिया। पंहिंजी मेज़बान नेमतुल्लाह जूणी खे ॾींदा इजाज़त अलाह।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: मोरू
0: नौशहरों,
1: मीरपुर खास,
0: लाड़काना,
1: सक्खर
0: गूंज रही है हर जगह पर
1: सिंध की आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क।

सिंध ने माली साल की 3500 रुपये का बजट अज पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाजमन के पगार में 10% ए रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में 7% वाध की तजवीज। तरक्याती बजट में वही कटौती, तरक्याती बजट 1018 अरब रुपये का घटाए 720 अरब रुपया मुख्तस करने की तजवीज। निज सूबाई तरक्याती बजट में 520 अरब रुपया में घटाए 385 अरब रुपया कई वही। गैर तरक्याती बजट 418 अरब रुपये के वही इजाफे से 2507 अरब रुपया करने की तजवीज। केटीएन न्यूज सिंध बजट जो मुकम्मल तफसील हथ कर वरता। दस्तावेजन मूजिब जिले के तरक्याती बजट 55 अरब रुपये में घटाए 15 अरब रुपया मुख्तस करने की तजवीज डी वही। बोझ मुतासर घर की तमीर वे प्रोग्राम लाए 97 अरब रुपया मुख्तस, गुडू बिराज जहा 11 ए सखर बिराज जहा 12 गेट तब्दील कर 12 अरब रुपया रखा वह। 1 अरब सिंध हुकूमत अदा की, 11 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक का मिलना है। सेहत लाए 17 अरब 43 करोड़ ए तालीमी शोबे लाए 25 अरब 86 करोड़ रुपया रखा वह। सिंध की बजट में आबाशी खाते लाए 30 अरब 80 करोड़, वक्सन सर्विस खाते लाए 31 अरब 59 करोड़ ए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाए 40 करोड़ 86 करोड़ रुपया मुख्तस किया वह। एमपीएस ए सिंध एमएनए जरिए मनसूबा देने वाले सेंडेमल डेवलपमेंट गोल्स जहा मेगा रेथा लाए 29 अरब रखा वह। कराची के 25 वडन मनसूबन लाए 14 अरब 11 करोड़ रुपया खसूसी तौर रखा वह। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज वन तहत 1300 नयू सीसीटीवी कैमराओं लगाने लाए 90 करोड़ रुपया मुख्तस। लाड़काने में 600 बिस्तर के अस्पताल के दावत लाए 5 अरब रखा रखने की तजवीज। 295 स्कूल्स के अपग्रेड करने लाए 9 अरब रखा वह। सिंध ने माली साल की बजट में करीब 100 अरब रखा वह। रजाकाबाद वेझो नेशनल हाईवे के एक खास मेडिकल कॉम्प्लेक्स कायम करने लाए 70 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। मटियारी सांगड़ ए टंडोल अयार जिले में पानी के कुदरती दौरन की बहाली लाए 1 अरब रखा वह। संजय वरे वजीर मुराद अली शाह नाणे वाले वजीर की हैसियत में बजट पेश कंदो। बजट की मंजूरी लाए सिंध काबीना जो खसूसी इजलास अज थींदो। एमक्यूएम बजट इजलास दौरान सख्त एहतजाज जो फैसलो करे वरतो। सिंध असेंबली के इजलास दौरान सिक्योरिटी जा इंतजाम भी सख्त किया वह। अमरीका ईरान मुआहदे की तफसील हासिल करने लाई इसराइली दरख्वास्त रद्द कर छी। इसराइली मीडिया का चवण है तो ईरान से मफामती यादाइशनामे से पहुंच लाई इसराइल दरख्वास्त कई हुई। अमरीका मुआहदो डिखारण का इनकार कर छोड़।

कारें इल्जाम हेठ कुहाड़ी हणी कतल बजना जख्मी पुलिस उन्हें गोट भर खास किले में जवाबदार हुसैन खास किले अमना खास किले के कुहाड़ी हणी कतल किया। पुलिस लाश जख्मी के अस्पताल मुंतकिल किया। जवाबदार गिरफ्तार कुहाड़ी बहत्तर।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज रुखसार सिंध की आवाज। मैं लोग ऐसे ही आवाज रूप से खींची जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, बिल्कुल टिपटॉप सर्कुलर एक एकदम स्ट्रांग हल्के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो भी आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपको और मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं, वक्त हुआ जाता है जी 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट लेट द नेवर। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। तो फिर खुदा खैरियत मौजूद और तो खुदा खैरियत मतलूब।

फैन हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. तो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके कर रहे हैं. विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि अपने हर काम में कामयाब होते रहें हमेशा हमेशा. आमीन.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का सेंस वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

एच ब्यूटी क्रीम, 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: मेरा फैन। White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा vitamins और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals skin में fully absorb हो जाए, skin को fair और fresh बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, glowing skin का राज। A product of Biocon International Pakistan.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुर लगाओ, गाना सुनाओ, उसमें आप लोग हमें कलाम सुनाएंगे, ठीक है जी? सूफी कलाम हो सकता है, नात हो सकती है, वो कोई भी कसीदा हो सकता है, ठीक है, कोई भी मनकबद हो सकती है, वो आप मुझे सुना सकते हैं और वो उसी टाइम पे प्ले कर दी जाएगी. तो ये है और ये कर सकते हैं आप लोग. तो आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के लिए लाइव कॉलिंग नंबर आपको बता चुकी हूँ. फर्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं, कॉल पे लाइन पे हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? आसिफ भाई, कैसे? ठीक ठाक.
1: आप सुनाएं.
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताएं कि कौन सा कलाम सुनाएंगे हमें?
1: हर जमाना मेरे हुसैन का इतना आपकी मेहरबानी होती.
0: ओके, अभी सुनाते हैं जी. और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मेरे दोस्त सुन रहे हैं.
0: थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. और ये रहा आपका कलाम जो कि मैंने कर दिया है प्ले.

0: खुशियों को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था, जिते हो जे तहफुज, जदीद सहूलतूं ऐ मंजूर थियल सिक्योरिटी।
3: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में,
2: सखर शिकारपुर रोड ते,
3: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू,
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल।
3: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मंसूबो,
2: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर।
3: रिहायशी प्लॉट्स 80, 120, 150 गज जा,
2: कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज आई 600 गज।
3: हिते तमा के मिलन थियो जदीद सहूलतूं,
2: साफ मिठो पानी,
3: बिजली, गैस,
2: 24 कलाक सिक्योरिटी,
3: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल। ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे,
2: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिन्ही लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो।
3: अज ही पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
2: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री।
3: कॉन्टेक्ट
2: 0300-9317-252
3: एंड 0313-2757-860। हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
2: तमाचे महफूज मुस्तकबिल आई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब। खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारन जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाओं जो शानदार ऐलान। हाने पंहिंजे बारन खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल, 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM आई 5 साल DPD, जने त 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम HV, CMW, ICNA, ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिणु मौजूदु आहिनि, जॾहिं त 2 सालनि जे कोर्सेज में दाख़िलो बिल्कुलु फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मञता असां वटि मौजूदु आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम।

0: welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इसी प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू, और कॉल करके आप लोग मुझे कोई भी कलाम, नात या कसीदा सुना के वो उसी टाइम पे प्ले करवा सकते हैं. ठीक है जी, तो ये कर सकते हैं और साथ साथ आप लोग मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं. कॉमेंट्स करने के लिए जी FM88 के पेज पे आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, साथ साथ 888-1 पे मैसेजेस कर सकते हैं आप लोग मुझे. तो कॉलर मेरे लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे नेक्स्ट कहाँ से कॉलर. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मौला मेरा बिखर होवे ते अलमां बिछावे.
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: छोटे भाई, बड़े भाई आपका बात कर रहा हूँ.
0: अरे वाह, आवाज को क्या हुआ है आपकी अली हसन भाई?
1: कोटिया में कटी, अभी अभी वापसी हुआ हूँ तो इसलिए आवाज तेज हो गई है भाई.
0: कोटिया से या कोयटा से?
1: कोटिया, कोटिया से
0: भाई. चले ठीक है, चले जबरदस्त.
1: आपको बहुत याद कर रहा हूँ. मैंने कहा छोटा भाई, बस इतनी ठंड थी, इतना शुरू था, क्या बताऊँ आप.
0: मैं अभी यही पूछने वाली थी, ठंड थी कि गर्मी थी?
1: अरे
0: वाह, क्या बात है जी, मतलब आपने बहुत एंजॉय किया होगा. बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी सुनाते हैं और कुछ कहेंगे.
1: बस मौला
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.

0: एक और कॉलर लेते हैं, चेक करते हैं कॉलर कहाँ से, चेक करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: साल बात कर रहा हूँ।
0: आप साल भाई, जल्दी से कौन सा कलाम सुनाएंगे?
1: मैं कैसे
0: सुना दें प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी।
1: हेलो
0: जी, जी आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी।
1: अभी
0: मुझे आप बस नाम बता दें कसीदे का, क्योंकि आप जो सुना रहे हैं मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई। ओके जी, ठीक है। और कुछ कहेंगे?
1: रात पता नहीं क्या बात में है। मेरे दोस्त है हॉस्पिटल ढेलो, मेरे ढेलो
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।

सिंधी नई माली साल जी 3500 अरब रुपयनि खां वधीक जी बजट अॼु पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मनि जे पघारनि में 10% ऐं रिटायर्ड मुलाज़मनि जी पेंशन में 7% वाध जी तजवीज़। तरक़ियाती बजट में वॾी कटौती, तरक़ियाती बजट 1018 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक़ियाती बजट में 520 अरब रुपया मां घटाए 385 अरब रुपया कई वई। गैर तरक़ियाती बजट 418 अरब रुपयनि जी वॾी इज़ाफ़े सां 2560 अरब रुपया करण जी तजवीज़। केशियन न्यूज सिंध जे बजट जे मुकमल तफ़सील हथ करे वरिता। दस्तावेज़नि मूजिबि सिंध जे तरक़ियाती बजट 55 अरब रुपयनि मां घटाए 15 अरब रुपया मख़्सूस करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। बोझ मुतासिर घरनि जे तामीर वारे प्रोग्राम लाइ 97 अरब रुपया मुख़्तस। गुडू बैराज जा 11 ऐं सखर बैराज जा 12 गेट तब्दील करण लाइ 12 अरब रुपया रखिया विया। सिंध जी नई माली साल जी बजट जी मंज़ूरी लाइ सिंध काबीना जो इजलास कुझु देरि में शुरू थियण वारो। काबीना जी मंज़ूरी बाद भले वज़ीर मुराद अली शाह बजट सिंध असेंबली में पेश कंदो। सिंधी बजट में आपाशी खाते लाइ 3 अरब 80 करोड़, वेबसाइट सर्विस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़ ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया। एमपीएस ऐं सिंध जे एमएनएस ज़रिए मनसूबा ॾियण वारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाइ 29 अरब रुपया मुख़्तस। कराचीअ जे 25 वॾनि मनसूबनि लाइ 14 अरब 11 करोड़ रखिया विया। कराचीअ सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 1 तहत 1300 नयूं सीसीटीवी कैमराऊं लॻाइण लाइ 90 करोड़ रुपया मुख़्तस। लाड़काणे में 600 बिस्तरनि जे इस्पताल जी अदावत लाइ 5 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 295 स्कूल्स खे अपग्रेड करण लाइ 9 अरब रुपया रखिया विया। एनएफसी को सिफियो न आहे जेको तब्दील न थी सघे, शयूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा तनवीर क़ौमी असेंबली में बजट ते तक़रीर कंदे चयो त बजट अवाम दोस्त आहे, अपोज़िशन बिना जवाब तनक़ीद करे रही आहे। राणा तनवीर जी तक़रीर दौरान पीटीआई ऐं लीगी एमएनएस में सख़्त जुमिलनि जी ॾे वठि बि थी। ॾुखियुनि हालतुनि में नून लीग जी क़यादत मुल्की मैशत खे संभालियो। मुख़ालिफ़ बजट जी वाखाण कनि पिया सोच समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ ऐं ममलकती वज़ीर बिलाल अज़रकियानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। अता तारड़ चयो त पीटीआई मुल्की मैशत जो बेड़ो ॿोड़ियो, नून लीग तारियो आहे। बिलाल अज़रकियानी पारां बजट पघारदार तबिके लाइ रिलीफ करार। कोरबा भरिसां औरत कारे इल्ज़ाम हेठि कुहाड़ियूं हणी ज़ख़्मी। पुलिस जो चवण आहे त घोट भरियो खासकली में जवाबदार हुसैन खासकली आमना खासकली खे कुहाड़ी हणी क़तल कयो। पुलिस लाश ऐं ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतकिल कयो। जवाबदार गिरफ़्तार, कुहाड़ी बि हथ। कोट में बिजली जी लोड शेडिंग खिलाफ़ शहरनि जो एहतियाज। सियासी, समाजी, मज़हबी जमायतुनि ऐं सिविल सोसाइटी पारां सेपको इंतज़ामिया ख़िलाफ़ एहतियाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि चयो त सेपको इंतज़ामिया जी गफ़लत सबबि शहर में बिजली जो संगीन बहरान आहे। सख़्त गर्मी में बिजली जी बंदि जो सिलसिलो ख़तमु कयो वञे। पुरलाल जे घोट अला बख़्श मीर जो जे रवासनि जो बुनियादी सहूलतुनि जी कोर्ट ख़िलाफ़ एहतियात। चूंडियल नुमाइंदनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी, घोट खे बुनियादी सहूलतूं ॾियण जो मुतालबो। गोठणनि चयो आहे त इलाइक़े जा चूंडियल नुमाइंदा वोट वठण बाद गुम आहिनि, केर बि घोट जा मसला हल करण लाइ तयार न आहे, मसला हल कया वञनि। टीआरी भरिसां नारी मुबैना तौर ते अगवा। वालिद जो वकार चंड नाले नौजवान ते धीअ खे अगवा करण जो इल्ज़ाम। पुलिस वटि रिपोर्ट बि दाख़िल कराए छॾी। मेयर मां 8 महीना अॻु मुबैना तौर ते अगवा थियल शागिर्दियाणी खालदा सुमरो जो बि हाईकोर्ट जे हुकुम ते केस दाख़िल। शाहिद जोगरो, अब्दुल अज़ीज़ उर्फ अज़ीज़ जुमराणी ऐं ॿिनि नामालूम जवाबदारनि ते केस दाख़िल। ट्रिब मेयर शाह में जसकम में शहरनि जो बदमनी ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। मुज़ाहिरनि मूजिबि शहर ऐं बिर पासे में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। पुलिस नाकाम थी वई आहे।

0: मौके दिए जाते हैं, कितने मौके मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में?
1: मैं आपको छोटा सा मिसाल दूं कि पाकिस्तान में जैसे अभी आजकल आम का सीजन है, ठीक है जी, तो जितने भी इलाके जहां पर आम पैदा होता है तो बेसिकली वहां पे आम का आम टूरिज्म हो सकता है। मिसाल के तौर पे सिंध के अंदर मीरपुर खास के इलाके हैं, नीचे इंटीरियर सिंध में बहुत से इलाके हैं जहाँ पर के आम बहुत वाफर मिजाज में पैदा होता है। पंजाब के को बहुत से इलाके हैं, रहीम यार खान, मुल्तान, और इस इलाके में आम पैदा होता है। तो ये जो सारा एरिया है ये फेस्टिविटी, ये मैंगो फेस्टिविटी का एरिया हो सकता है। इसी तरह सर्दियों में जैसे सिट्रस है, जैसे पीनू है, रेड ब्लड है, माल्टा है, तो जिन इलाकों में जैसे सरगोधा में या खानपुर में ऐसी जगहों पे, खुशहाल में जहाँ पे माल्टा पैदा होता है, तो वहां पे सिट्रस टूरिज्म की जा सकती है। जैसे कि स्पेन के अंदर जब टमाटर वहां पैदा होता है तो वो टमाटीना फेस्टिवल करते हैं, और वो टमाटर से पूरी दुनिया से टमाटर को के इस खेल को और टमाटर की अबंडेंस को एंजॉय करने आते हैं, और वो इसकी थेरेपीज करते हैं, और वो एक पूरा महीना जो है वो टमाटर को फेस्टिवल होता है वहां पे। इसी तरह हमारे आपको यानी जो लोग गांव देहात से थोड़ा बहुत कनेक्टेड हैं उनको पता है कि गांव देहात में मेले लगा करते हैं। जैसे बैसाखी का मेला होता था, गंदम कटने के बाद गंदम की फसल को सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी का मेला होता था। इसी तरह ही आप आलू का मेला कह सकते हैं। इसी तरह अभी आजकल अंगूर का सीजन है, जिन इलाकों में अंगूर उगता है तो वहां पे फार्म टूर्स किए जाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी का जब टाइम होता है तो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हम लोग अरेंज करते हैं। तो एग्री टूरिज्म का जो हमारा इदारा है इसमें हम पूरे पाकिस्तान में लगभग 50 से ज्यादा फेस्टिवल पूरा साल किया करते हैं। जैसे चकवाल में हम लोग ऑलिव फेस्टिवल करते हैं, जैतून का मेला होता है, फिग मेला आजकल हम कर रहे हैं, समुद्री के पास जामन का फेस्टिवल होता है। तो इसी तरह तकरीबन हमारे पास 40 से 50 फ्रूट्स हैं जिनका हम फेस्टिवल करते हैं। इसी तरह ही सब्जियां हैं हमारे पास, हम उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम इवन हम सेलिब्रेट करना चाहें तो दूध को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, मिल्क फेस्टिवल किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर जो चीज जहां पैदा होती है, आप अगर कराची के इर्द गिर्द हैं तो चीकू का फेस्टिवल हो सकता है आपके वहां पे, जो जो भी ऐसी चीजें, खैरपुर में खजूर का मेला किया जा सकता है। तो हमें चाहिए हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, खासतौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम ये नहीं है कि लोगों को सिर्फ वो मतलब वहां पे बहुत कुछ नहीं हो रहा जो होना चाहिए, उसमें एक ये भी है मेरी नजर में पाकिस्तान के चारों सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी एक फार्म टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, कल्चरल फेस्टिवल्स होने चाहिए। ताकि उससे फायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पे जैसे आपने कोई चीज उगाई उसको बेचने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है कि उसका उसकी प्रमोशन हो जाएगी, उसका उसका रेट अच्छा मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम पूरे पाकिस्तान में जो जो भी जिस जिस गांव में जो चीज भी उगती है उसको उसके गांव से उसको ब्रांड कर दें कि उस इलाके की जो पैदावार है, अगर किसी जगह पे गन्ना उगता है तो वहां पे गुड़ के मेले लगाए जाएं। गुड़ मेला हम लोग पिछले 10 साल से गुड़ मेला करते हैं, गुड़ फेस्टिवल करते हैं। तो ऐसी चीजें हम करके उस लोकल इकोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, जिस तरह आपने गवर्नमेंट की बात की तो हमें आप ये बताइएगा कि हुकूमत और निजी शुबे इस मैदान में किस तरह तआवुन कर सकते हैं।

0: आपके ख्याल में?
1: मेरे हिसाब से देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़राअत का शोबा है वो अपनी मदद आप के तहत ही चल रहा है। अगर सच बोला जाए तो इस वक्त कोई, जैसे मैं इसको ऐसे मिसाल देता हूँ,

कि अगर आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब आप बीमार होते हैं खुदा ना खास्ता, तो आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके खड़े होते हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं? आप यही कहते हैं कि जी मैं किसी चले प्राइवेट क्लिनिक में जाके, अगर आपके बच्चे या आपके भांजे भतीजे जो भी हैं वो किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप बेहतर फैसिलिटी चाहते हैं ना, जब आप बेहतर फैसिलिटी पे जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के तमाम शोबों की कमोबेश कोई अच्छी हालत नहीं है। इसी तरह ज़राअत का भी यही हाल है कि ज़राअत के अंदर भी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही पिछले 20-30 सालों में जिसको कि हम काबिले जिक्र कह सकें। तो इसलिए जो ये सारा सेक्टर है, ये अमूमी तौर पे लोग अपने तजर्बात करके ही सीख रहे हैं और अपनी जो एक्सपीरियंसेस सही एक दूसरे को डेटा दे रहे हैं। और आजकल के दौर में मेरी नज़र में जो खास तौर पे टेक्नोलॉजी का ईरा है, आजकल इंटरनेट मौजूद है गांव गांव देहात में, यूट्यूब आपके पास मौजूद है, आपके पास गूगल की है, आपके पास सर्च इंजन मौजूद है। आजकल के दौर में आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी मुझे पता नहीं था। आप ढूंढने वाला, अगर हर गांव देहात में आप लोग जो पढ़े लिखे, हर जिम्मेदार के बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, हर गांव के अंदर ऐसे लोग हैं, तो सीखने के लिए अगर हमें सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सरकार का काम यह है कि वो फैसिलिटेट

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू भी. तो बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के मुझे रिसीव हो चुके हैं, तो मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ चलेंगे. और मुझे मैसेज कर दिया है अलमास सोलंगी ने. अलमास सोलंगी, नजमा सोलंगी, नशीरो फिरोज से हमें सुन रही हैं. बाजी अस्सलामुअलैकुम, शो नाइस है, थैंक यू सो मच. अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं कुंबर से, शो ग्रेट है. रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच रेहाना खान. और कहती हैं मैं भी आपके साथ साथ हूँ, ऐसे ही साथ देती रहें, इंजॉय करती रहें.

अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार वापस आ चुके हैं जी लास्ट लिंग में एंड लास्ट में हम एक दो या तीन लास्ट लकी कॉलर्स लेंगे और उनसे पूछेंगे आज की अच्छी बात

0: लास्ट लकी कॉलर लाइन पे हमारे साथ मौजूद है. हेलो. ओके जी, हम चेक करेंगे एक बार फिर से. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. ओके जी, आवाज नहीं आ रही है मुझे, और क्यों नहीं आ रही है? हेलो. ओके जी, एक और ट्राई करेंगे. हेलो.
1: आवाज आ रही है अभी?
0: हाँ जी, अभी आवाज आ रही है. मुझे बताइएगा कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी, सईद अहमद बात कर रहा हूँ, सिंध सोसाइटी तखर से.
0: अच्छा जी सईद अहमद, मुझे बताइए आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज ये बातें हर चीज अच्छी होती है, बस वो जो आपने सेगमेंट शुरू किया था वो आधा घंटा में ब्रेक पे चला गया. आपने पहले अनाउंसमेंट ही नहीं की, मैं वो सुन ही नहीं पाया.
0: नहीं, मैंने बिल्कुल अनाउंसमेंट की थी, असल में मेरी अनाउंसमेंट आपने सुनी नहीं होगी.
1: अच्छा, मैंने नहीं सुनी होगी. बिल्कुल सही बात है यार जी. वो आप प्रोग्राम दो दिन हफ्ते में कर रही है ना, पहले तो थर्सडे को होता था, अभी आपने वेडनेसडे को शुरू किया. मैं बहुत शौक से सुनता हूँ ये प्रोग्राम हरा भरा पाकिस्तान. और अच्छी बात ये जितना हो सके इंसान अल्लाह को याद करे, ये जो दौर चल रहा है, नमाज पढ़े और जो भी हो सके अच्छे अच्छे काम करे, किसी के साथ फिराड धोखा ना करे, इससे ग्रोथ करे आदमी. क्योंकि आजकल आदमी ज्यादा फिराड और धोखा बहुत ज्यादा बढ़ गया है. बस किसी भी तरह के हर कोई कह रहा है मेरा मफाद पूरा हो जाए बस, और वादा खिलाफी इंसान बहुत करता चला जा रहा है. दुनिया में तो उसके मफादात हासिल हो जाएंगे यार जी, मगर उस जान में बहुत तकलीफ आ जाएगी.
0: चलिए जी, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सईद अहमद. अल्लाह हाफिज. ये थे लास्ट में लकी कॉलर आज के, और इसी के साथ हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट चैट होगी शाम को 7 से लेके 8 बजे तक, सुनना मत भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज़.

सिंध काबीना नए माली साल जी बजट जी मंजूरी ने छी। सिंध काबीना जो वरे वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठ इजलास। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार ने पेंशन में वफाक जेतरी 7-7 सैकड़ो वाध करण जी मंजूरी। पे स्केल रिवाइज थींदो साल 2022 ऐं 2025 जो हेठां क्लीफ गॾाए नओं पे स्केल 2026 कयो वेंदो। वरी वज़ीर मुराद अली शाह जो चवणु आहे त बजट में हर तबिके जो ख़्यालु रखियो वियो आहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायतुनि ते ग़ुरबत जे ख़ात्मे जे लाइ ख़ासि क़दम खया विया आहिनि। औरतनि जी घटि में घटि उजरत बाबति बि अहम फ़ैसिलो कयो वियो आहे। पर वज़ीर मुराद अली शाह मंझंदि 3 वॻे बजट सिंध असेंबली में पेश कंदो।

0: सिंध जी तरक्याती बजट में वॾी कटौती 1018 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब रुपया करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक्याती बजट बि 520 अरब मां घटाए 385 अरब रुपया कई वई। गैर तरक्याती बजट 418 अरब रुपयनि जी वॾी वॾे इज़ाफ़े सां 2560 अरब रुपया करण जी तजवीज़। के टी एन न्यूज़ सिंध जी बजट जा मुकमल तफ़सील हथ करे वरिता। ज़िलनि जी तरक्याती बजट 55 अरब रुपयनि मां घटाए 15 अरब करण जी तजवीज़ शामिल। बोर्ड मुतासिर घरनि जी तामीर वारे प्रोग्राम जे लाइ 97 अरब रुपया मख़्तस। सिंध जी बजट में आपाशी खाते जे लाइ 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स एंड सर्विसिस खाते जे लाइ 31 अरब 59 करोड़ ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते जे लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया। एमपीए ऐं सिंध जे एमएनए ज़रिए मनसूबा ॾियण वारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाइ 29 अरब रुपया मुख़्तस। कराची जे 25 वॾनि मनसूबनि जे लाइ 14 अरब 11 करोड़ रुपया रखिया विया। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 1 तहत 1300 नयूं सीसीटीवी कैमराज लॻाइण जे लाइ 90 करोड़ रुपया मुख़्तस। लाड़काणो में 600 बिस्तरनि जी अस्पताल जी अॾावत जे लाइ 5 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 295 स्कूल खे अपग्रेड करण जे लाइ 9 अरब रुपया रखिया विया। एनएफसी को सहीफ़ो नाहे जेको तब्दील न थी सघे, शयूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि। वफ़ाकी वज़ीर राणा तनवीर क़ौम असेंबली में बजट ते तक़रीर कंदे चयो आहे त बजट अवाम दोस्त आहे, अपोज़िशन बिना जवाब तनक़ीद करे रही आहे। राणा तनवीर जी तकरीर दौरान पीटीआई ऐं लीगी एमएनए में सख़्त जुमलनि जी ॾे वठि बि थी। ॾुखियुनि हालतुनि में नून लीग जी क़यादत मुल्की मईशत खे संभालियो, मुख़ालिफ़ बि बजट जी वाखाण करे रहिया आहिनि। सुस्तबा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारण ऐं मुमलिकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारण चयो त पीटीआई मुल्की मईशत जो बेड़ो ॿोड़ियो, नून लीग तारियो आहे। बिलाल अज़हर कयानी पारां बजट पघारदार तबिके जे लाइ रिलीफ करार।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

परिणाम श्री करो सुंदर हिंदो भजन जो सजो जो तो झूम झूमदार हर मुखे जो मारे सांभर सुपेर जो सुपेर

ससरवालू पुनन कहर में लखे बजाओ घुमर कहर में लुभड़ा छतरिया लुभड़ा छतरिया लहर में नूर नाम छतर

Yeah.

ਜਿਹੜੇ ਹੁਮਨ ਆਇਆ ਵਲ ਕੰਝੇ ਲਾਏ ਕਚਾ ਕਾਹ ਕੰਝਨ ਮਾ ਆਇਓ ਪੂਰ

ਮਿਲਣ ਮਨ ਹਾਂ।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

आना चाहते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं हमारी जिंदगी में जो कि ना हम फेस नहीं कर पाते हैं, और उनसे सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो चीज होती है वो ये होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट हम जो है ना वो अपनी लाइफ में जो है ना वो एड ना करें. तो इन तमाम बातों का जो है ना वो तबसरा होता है इस प्रोग्राम में. आप लोगों को बताती हूँ बहुत सारी बातें जो कि शायद आप लोगों के काम आ जाती हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं. बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आके हमारा इंतजार कर रहे थे. ऐसी बहुत सारी खवातीन जो कि हमें किचन में सुन रही होंगी, तो तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. इसी के साथ साथ हम ऐसा करते हैं यहाँ पर आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. सबसे पहले प्रोग्राम आगे से प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद जो है ना वापस आकर आपको बताते हैं इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है. बहुत सारी चीजें जो कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के साथ साथ हम जनाब करेंगे, और आपका हमारा साथ जो है वो कैसे जुड़ने वाला है, कौन से लोग हमारे साथ मौजूद है, किस तरह ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे. लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ. तो कसीदा सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है. आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. लगाते जाइए और खूबसूरती हासिल करते जाइए.

0: ओके जनाब, आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिदरा आपके साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हो जाइए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा और बताएंगे क्या तरीके कार है। लेकिन उससे पहले जो है ना, आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या होने वाला, यानी कि सवाल क्या होगा, तो उसकी जानिब भी आ जाते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताएंगे कि मुहर्रम का क्या मतलब है। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए आज मुहर्रम का क्या मतलब है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं फेसबुक पर, तो जनाब हमारा पेज है जी लाड़काना FM 88.8। अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। तो पेज पर आइए और आप जो है ना, जैसे ही पेज को सर्च करते हैं, पेज को ऑन करते हैं, तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो बिल्कुल जी, आप लोग हमारे प्रोग्राम की रौनक ही होते हैं, जल्दी से हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाइए और हमारे साथ साथ जुड़ते जाइए। इसके साथ साथ मुझे बताइए कि मुहर्रम का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं जानते हों। तो मुझे जल्दी से बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो इतनी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, तो क्या वो जानते हैं कि मुहर्रम का क्या मतलब है। और इसके साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं जनाब, बहुत सारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जा रहे हैं। जल्दी से बनते जाइए और बताइए आप कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन करते जा रहे हो। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को जो बातें बताती हूँ वो जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में होती है। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हम क्यों ना करें जनाब, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल जी, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बताएंगे हमें जल्दी से। और साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायल करते हैं 03-15-799-0595। जल्दी से इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर आपके एरिया में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर नजीर खोसो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बलोचिस्तान से, वेलकम करते हैं और लिखते हैं कि हमारे लिए लम्हा फिक्रियार ये है कि अच्छी बातें ज्यादातर हमारी गुफ्तगू तक हमारी फोन की गैलरी और स्टेटस पर तो मौजूद होती हैं, जबकि हमारे अमल और किरदार से गायब होती हैं। या बिल्कुल तमाम सही गाल किया है। और प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, थैंक यू सो मच। और वहीद वफाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, क्या हाल है आपके, मैं ठीक, कहते हैं आपकी माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन होते हैं, फ्रॉम जेकब आबाद से आप हमारे साथ मौजूद हैं, सो बहुत शुक्रिया। और फिरोज अली ब्रोही हमारे साथ मौजूद हैं, हाय। और जी हमारे साथ ही आकाश अली मोरो से मोलाली सलामत कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अदी केड़ा हाल है अवां जा, असा तवां जो प्रोग्राम फैमिली सा गड बुधन आयो, प्लीज प्ले नोहा हर जमाना मेरे हुसैन का, बिल्कुल जी बिल्कुल लगाते हैं आपके लिए। और कहते हैं रहमान अली पीरजादो, दिलेर जान पीरजादो फ्रॉम मोरो, आपका शो बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ, आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। और मोलाई मुजाहिद बोजार हमें सुन रहे हैं ठूक चूसल, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, केड़ा हाल है अवां जमा, सफा ठीक है ताब उदा किया। और मलिक जफर रत्ता हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ हैं जी, मोहम्मद बख्श पाकिस्तान रेलवे गेट में, तो
1: नादे अली को पढ़ना सुन्नते रसूल,
0: ओके जी, यानी कि आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। उसके अलावा पोस्ट को आपने लाइक और शेयर करना है बहुत ज्यादा वाला, ताकि बहुत से लोगों को हम बता सके कि प्रोग्राम जो है ना आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। और बिलाल अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, की आयो सिद्रा, ठीक है तां बुधा, की आयो बिलाल, आई बिल्कुल तमाशा की ज्वाइन करना वन तमाम जो प्यारी प्यारी गालू होती, जो कि प्रोग्राम जो हिस्सो होंगे तवा सा कचहरी कंदी तवा सा गजे को प्रोडक्ट जो जिक्र कंदी प्रोडक्ट के बारे में खोर सारी गालू कंदी तवा जो असो सात पूरी पूरी 3 बजे तीन मौजूद रहो। सो तवा कारी नवन जो इतने वेठा हो, हाँ टाइम थे जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ हलूँ था, उनका वापसी जल्दी तुम्हारी मोटी जो तवा कारी नवनो असा से गुड मौजूद रहो, बुधंद रहो प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: लीजिए FM 88
1: सिंध की आवाज। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM88 नेटवर्क सिंध।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो बिल्कुल जी, अगर यहाँ पर खूबसूरती की बातें होती हो और खूबसूरती वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत सा फायदा तो होगा. अगर आप ये सोचें, अगर आप ये समझें कि आप लोगों के लिए मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं जो कि फुल नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, उससे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि आपके ऑल स्किन टाइप के लिए तैयार किया गया हो तो आपको सुनकर अच्छा लग रहा है. जैसे ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छा फील होगा क्योंकि आप लोग वो चीजें वाजे देखेंगे जो कि चीजें शायद आप कभी सोच रहे होते थे. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए इतने अच्छे और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जब आप इस्तेमाल करने बैठते हैं तो आप खुद ही कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो है ना वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं. ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करने, अलग अलग प्रोडक्ट्स के पीछे भागना है. बस आप लोगों ने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये सिलेक्ट कर लेने हैं और आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है. तो बिल्कुल जी, अगर उन लोगों को बताते चलें जिनको नहीं पता कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है. जैसे कि अगर आप अपनी ब्यूटी को निखारना चाहते हैं, ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट है. जैसे कि आप लोगों को नाइट क्रीम मिल रही है, आप लोगों को फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब मिल रहा है, साबुन मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली जो है वो परचेज कर सकते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, आप जाते हैं बस परचेज करके आते हैं. और व्हाइट एज ब्यूटी सोप अवेलेबल है, व्हाइट एज फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है, साबुन जो है वो एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है, और उसके अलावा जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम भी एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार की गई है. उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज लवली क्रीम, तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है. वो लोग जो कि भाई मेकअप नहीं लगा पाते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पाते, तो आपने व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना है. तो व्हाइट एज लवली क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों को क्या फायदा पहुंचता है, तो इसकी जानिब आते हैं. तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि भाई आप लोगों का जो है ना ही इतना ज्यादा वक्त लेता है, ना ही आपके इतने सारे पैसे लगते हैं. आप लोगों के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बस आप लगाते हैं और आप रेडी हो जाते हैं. आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई इस तरह का सीन आपकी जिंदगी में चल रहा है कि भाई हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है और लेकिन हमने ग्लो भी करना है और हमने जो है ना खूबसूरती भी हासिल करनी है, तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी. और ना सिर्फ ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है बल्कि इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है. और सनस्क्रीन ऐड करने का रीजन ये था कि भाई आप लोगों को जो है ना वो सूरज के ये जो नुकसानदार असरात होते ना इनसे भी आप लोगों की स्किन की हिफाजत की जाए. तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फुल ऑफ विटामिन का फार्मूला है, उसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है. तो बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है आप लोग तमाम ब्यूटीज के लिए. जितने भी खूबसूरत लोग हमें सुन रहे हैं और खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहते हैं, खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लाजमी मेरे कहने पर ट्राई करके देखिएगा. और इसमें कोई भी एज लिमिट भी नहीं है कि भाई आपने इस उम्र में जाकर लगाना है. बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मर्द हजरात हो खवातीन हो, तो आप सारे इस्तेमाल कीजिए. खूबसूरती जो है ना वो आप देखेंगे कि आपको किस तरह मिलती जा रही है. और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का अगर हम जिक्र करें तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना ये उन लोगों के लिए, उन खवातीन और मर्द हजरात के लिए, टीनेजर्स हो या फिर आपकी एज कितनी भी ज्यादा लेकिन आपके एक्नी नहीं जा रहे, एक्नी तो चले जा चुके हैं लेकिन आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात थे वो नहीं जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा निशान है, कोई कट है, कोई जलने का निशान है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ना परफेक्ट प्रोडक्ट साबित होगा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब. ये आप नाम याद रखिए क्योंकि जब आप अपने लिए परचेज करने जाते हैं तो आपको नाम आना चाहिए. तो नाम है जनाब डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब. ये आप परचेज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है. आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की खास बात ये है कि इसे आप जो है ना
अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसे आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों की जो फेयरनेस है वो भी आपको मिलती रहेगी, आप लोगों के चेहरे पर जो गैर जरूरी निशानात हैं, कोई भी कट है, कोई इस तरह का कोई निशान है या फिर एक्नी प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज्यादा होती है, तो वो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो ये कंट्रोल कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है तमाम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं और आपके हर एरिया में, हर दुकान पर, हर गोठ में, हर सिटी में मैं चाहती हूँ कि अवेलेबल होने चाहिए, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए। उसके लिए थोड़ी सी आप भी मेरी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो ऐसे कि आपको जो नंबर बताया जाता है प्रोग्राम के अंदर, मुझे नहीं ना पता कि कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो आप थोड़ा सा जो है ना ये काम कर दिया करें कि जो नंबर आपको बताया जाता है उसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज छोड़ दिया करें, उन्हें बताएं कि भाई आप कहाँ से शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल रहे वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट, ताकि वो अवेलेबल करा सके। तो जल्दी जल्दी से आप जो है वो नंबर डायल कीजिए और नंबर है 03-15-799-0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो सके वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं तफसील के साथ, लेकिन फिलहाल जो है वो बारी आ चुकी है कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप अच्छे से जान सके। और इसके साथ साथ मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है।

आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप जो है वो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद दीजिए आपके फीडबैक्स की जाने बात। अच्छा आकाश अली कहते हैं आप ही मैं मोरो से हूँ। ओके आकाश भाई, आपको वेलकम करते हैं। मोरो वाले सब खूबसूरत लोगों को वेलकम किया जाता है। और उसके अलावा जी अब्दुल गफार हमारे साथ हैं, कहते हैं माइनर मेलसी से मास्टर अब्दुल गफार, मोहम्मद बिलाल और मास्टर सईद नूरशाही और मास्टर वजीर अहमद चौहान हमारे साथ हैं। चलें सब भाइयों को वेलकम किया जाता है। और एएम अंसारी हमारे साथ मौजूद है। ओके जी, सो एएम अंसारी लिखते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हिजरी साल की पहली तारीख करबला की याद और इस्लाम के लिए आले रसूल की दी गई कुर्बानी को इस नातवां बंदे का आज जाना सलाम। सलाम एंड वेलकम इन शो, गुड इवनिंग ऑल। चलें जी वेलकम करते ए मंसारी आपको बहुत ही अच्छी से कमेंट के साथ, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और ये हमारे साथ हैं बिलाल अली, कहते हैं अल्लाह से ताल्लुक तो ऐसा होना चाहिए जैसे माँ से होता है, थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो। बिल्कुल जी, मेरा ये एक मानना है, मतलब जाती एक मेरा ये तजुर्बा है शायद, या फिर ये मेरा मानना है कि अगर आप दुनिया में कुछ भी कर लें, कितने ही लोग आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, आप कितने ही कामयाब हैं, कुछ भी हैं आप, लेकिन आपका जो ताल्लुक है ना वो अल्लाह से बहुत मजबूत होना चाहिए। एक वही है जिससे अगर आप ताल्लुक अच्छा बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी जो है ना वो सुकून के साथ गुजरती है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो बेसुकूनी वाली जिंदगी जीते हैं, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। असल उसका पता है ये रीजन क्या होता है, यही कि वो लोग अल्लाह से दूर होते हैं। उनकी जिंदगी में बस ये दुनिया की भाग दौड़ होती है, उनकी जिंदगी में उन्हें समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना है। तो अगर जब आप अल्लाह से दूरियां बना लेते हैं तब आपकी जिंदगी जो है वो बेसकूनियों की जानिब चली जाती है। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून हो और आप खुश रहें तो आपका ताल्लुक अल्लाह से बेहतर होना चाहिए, और कोशिश किया करें।

ओके, सो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का क्या मतलब है, और दोदा अली भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं। फहीम शेख हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। रेशम गली लाड़काना खां तमाशा सगड़ मौजूद आयो आपका।

अच्छा किशोर भाई कहते हैं यदि मूं आंसर डिलीट कयो आ अगर समझी सगो तो बेहतर आ न तवा जो जको जवाब हो ना वो सही हुयो चलें ठीक है आप पैनल पर भी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं पैनल पर भी आपके मैसेजेस हैं बिल्कुल सबको जो है ना वो शामिल प्रोग्राम रखा जाएगा और आप जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें ये आप लोगों की मोहब्बतें होती हैं जो आप हमारे पोस्ट से करते हैं तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और जनाब बताइए कि क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर अभी तक पेंडिंग में है तो इतना ज्यादा मत सोचा करें कि आपकी खूबसूरती जो है ना वो ऐसा है कि भाई जब आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं तब आप अपने चेहरे को वो प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं जिनकी आपकी स्किन को जरूरत है तब आपकी स्किन जो है ना वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खराब ना हो तो आपने व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आपको इजीली मिल रहे हैं तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए वहां से नाम लेकर तलब कीजिए और डायल कीजिए 03 15 799 0595

अच्छा दर्दे दिल हमारे साथ हैं, कहती मुहर्रम हमें सबर कुर्बानी और हक पर कायम रहने का दर्स देता है। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने हमें सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है मगर हक का रास्ता नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल सही। और कहती है ओ मेरी जानी अलीजा सलाम बोल रही है और शो सुन रही है, दोनों परियों को वेलकम किया जाता है। ए मंसारी आपने शायद, हाँ जी चलें ठीक है लगाते हैं, जिन जिन लोगों ने फरमाइश कर दी है कोशिश करूंगी कि सबके जो कसीदे हैं कलाम है वो शामिल प्रोग्राम किए जाएं। ठीक है अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मुझे तो डी स्किन क्रीम के प्रोडक्ट्स में फेस वॉश और सोप एंड शैम्पू खपे बट मिस्टर इरफान सियाल साहब डू नॉट। अच्छा चलिए आपने रब्ता किया उनसे, वैसे बताइए जरा मुझे तो जितना पता है कि वो इरफान साहब जो है ना वो सारे लोगों को रिस्पांस देते हैं और अगर आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपने कहाँ से परचेज करने हैं या फिर जो भी चीज़ें आप उनसे पूछते हैं वो आपको जो है ना वो अच्छे से गाइड कर देते हैं। तो आप नंबर के ऊपर रब्ता करते रहें। वैसे अभी जितने मार्केट में प्रोडक्ट आए हैं तो आपको वही मिलेंगे ना, बाकी जो बनाए जाएंगे तो वो आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो अभी डी स्किन का फेस वॉश और जस्ट क्रीम मौजूद है तो आप ये दोनों चीजें परचेज कर सकते हैं। ओके जी। और उसके अलावा कहते हैं कि अल्लाह पाक से ताल्लुक और उसकी मखलूक से भी क्योंकि हर दिल में अल्लाह पाक है। ये तो सही बात है वैसे, लेकिन ऐसा नहीं कि ना कि आप सिर्फ दुनिया की भीड़ में जो है ना वो गुम हो जाएं। और साबिर खान हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं अज दिल सयो सिदरा जो प्रोग्राम बुधू अं शामिल भी थियो तो बबत आज मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम बुधू पया। और जीशान राजपूत हमारे साथ हैं। हेलो वासा भाई भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, सो वासा भाई आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है।

अपने तनाव से प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो पूरे 3 बजे तक आए, आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं पूरी 3 बजे तक और यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

सिंधु काबीना नए माली साल की बजट की मंजूरी दे छी। सिंधु काबीना के वे वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठ इजलास। सरकारी मुलाजमन की पगार ए पेंशन में वफाक जी 7-7 सैकड़ों वाध करण की मंजूरी। पे स्केल रिवाइज थी साल 2022 2025 जो इजाज रिलीफ कराए नव पे स्केल 2026 करो। वे वजीर मुराद अली शाह चवण है बजट में हर तबके ख्याल रखे वो है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायतों से अमल कदे गुर्बत के खात्मे के लिए खास कदम खाया व्यान मोहरत की घट में घट उजरत बाबत भी अहम फैसलो किया वो है। वे वजीर मुराद अली वगे बजट सिंध असेंबली में पेश कर।

सिंध जी तरक्याती बजट में वधीक कटौती 1,018 अरब रुपयनि मां घटि आहे। 720 अरब रुपया करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक्याती बजट बि 520 अरब मां घटि आहे, 385 अरब रुपया कई वई। गैर तरक्याती बजट 418 अरब रुपयनि जी वरी वॾे इज़ाफ़े सां 2560 अरब रुपया करण जी तजवीज़। KTN न्यूज़ सिंध जी बजट जा मुकमल तफ़सील हथु करे वरिता। ज़िलनि जे तरक़ियाती बजट 55 अरब रुपयनि मां घटि आहे, 15 अरब करण जी तजवीज़ शामिल। मोड मुतासिर घरनि जी तामीर वारे प्रोग्राम जे लाइ 97 अरब रुपया मख़्तस।

सिंध जी बजट में आबपाशी खाते जे लाइ 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स एंड सर्विसिस खाते जे लाइ 31 अरब 59 करोड़ ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते जे लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया। एमपीए ऐं सिंध जे एमएनए ज़रिए मनसूबा ॾियण वारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाइ 29 अरब रुपया मुख़्तस। कराची जे 25 वॾनि मनसूबनि जे लाइ 14 अरब 11 करोड़ रुपया रखिया विया। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 तहत 1300 नयूं सीसीटीवी कैमराज लॻाइण जे लाइ 90 करोड़ रुपया मुख़्तस। लाड़काणो में 600 बिस्तरनि जी अस्पताल जी अॾावत जे लाइ 5 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 295 स्कूल्स खे अपग्रेड करण जे लाइ 9 अरब रुपया रखिया विया। एलएफसी को सहीफ़ो न आहे जेको तब्दील न थी सघे, शयूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा तनवीर क़ौमी असेंबली में बजट ते तक़रीर कंदे चयो आहे त बजट अवाम दोस्त आहे। अपोज़िशन बिना जवाब तनक़ीद करे रही आहे। राणा तनवीर जी तक़रीर दौरान पीटीआई ऐं लीगी एमएनएस में सख़्त जुमिलनि जी ॾे वठि। ॾुखियुनि हालतुनि में नून लीग जी क़यादत मुल्की मईशत खे संभालियो। मुख़ालिफ़ बि बजट जी वाखाण करे रहिया आहिनि। सुस्तमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण ऐं मुमलिकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारण चयो त पीटीआई मुल्की मईशत जो बेड़ो ॿोड़ियो, नून लीग तारियो आहे। बिलाल अज़हर कयानी पारां बजट पघारदार तबिके जे लाइ रिलीफ करार। कोरोना सां औरत कार इल्ज़ाम हेठि कुहाड़ियूं हणी क़तल, ॿ ॼणा ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त ॻोठ वरियो ख़ासकेलीअ में जवाबदार हुसैन ख़ासकेली आमना ख़ासकेली खे कुहाड़ियूं हणी क़तल कयो। पुलिस लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार, कुहाड़ी हथ। कंदकोट में बिजली जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। सियासी, समाजी, मज़हबी जमातुनि ऐं सिविल सोसाइटी पारां सेप्को इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। ॿुधाइनि चयो त सेप्को इंतिज़ामिया जी गफ़लत सबबि शहर में बिजली जो संगीन बुहरान आहे। सख़्त गर्मीअ में बिजली जी बंदिश जो सिलसिलो ख़तमु कयो वञे। उलेरोलाल जे ॻोठ अलाबख़्श बीरजत जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। चूंडल नुमाइंदनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। ॻोठ खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो। ॻोठाणनि चयो आहे त इलाइक़े जा चूंडल नुमाइंदा वोट वठण बाद गुम आहिनि। केर बि ॻोठ जा मसाला हल करण जे लाइ तयारु न आहे। मसाला हल कया वञनि।

0: ॾियारी भरिसां नारी मुबैना तौरु अगवा वालिद जो वका अचण नाले नौजवान ते धीउ खे अगवा करण जो इल्ज़ाम पुलिस वटि रिपोर्ट बि दाख़िल कराए छॾी मेहर मां अठ महीना अॻु मुबैना तौरु अगवा थियल शागिर्दियाणी ख़ालिदा सुमरू जो बि हाईकोर्ट जे हुकुम ते केस दाख़िल शाहिद जोगरो अब्दुल अज़ीज़ उर्फ अज़ीज़ उमराणी ऐं ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि ते केस दाख़िल
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज GAFM
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज
1: और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो

मैं जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जियो फेम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ है। बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड ई स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे से। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में जानना आप चाहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं जो कि लगाते साथ ही आप लोगों की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाती है। आप लोगों को ऐसी खूबसूरती मिलती है जो कि हमेशा आप लोगों के चेहरे पर बरकरार रह जाती है। तो ऐसा नहीं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि इस्तेमाल करने के बाद हमने अगर रिजल्ट्स जो है ना मिल गए उसके बाद हमने प्रोडक्ट को कहीं छोड़ दिया तो फिर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी कहीं दूर हो जाएंगे। तो ऐसा कोई सी नहीं बनेगा, आप लगाते रहेंगे आपको जो खूबसूरती मिलेगी वो आपकी ही होगी, कहीं नहीं जाएगी। तो बिल्कुल अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप जान चुके हैं कि भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने अच्छे और कितने सारे प्रोडक्ट्स। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में एंड डी स्किन ब्यूटी जो है ना वो सोप के बारे में नहीं बल्कि फेस वॉश के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो दोनों चीजें तैयार की गई है इसकी क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने पर जो है ना वो ये आप सोच सकेंगे भाई हाँ हमें भी ये जो प्रोडक्ट है ना ये चाहिए।

क्रॉकरी से अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप लोगों के एरिया में मिल रही है नहीं, ये चीज भी बड़ी मायने रखती है। तो अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो भाई आपने डायल करना है 03-15-799-0595। जल्दी से ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर आपके एरिया में आपके सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और आप वहां से जाकर बस परचेज करके आ जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाती बल्कि आपके चेहरे पर जितने मसाले हैं वो सारे भी खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मजे की बात है कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो जल्दी से जो है ना बिल्कुल जी इस्तेमाल करके देखिए जी स्किन ब्यूटी क्रीम गारंटी के साथ आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन फेस वॉश तो डी स्किन फेस वॉश भी आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश जो है हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी स्किन के ऊपर जो है ना वो डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहती है, आपके चेहरे की ग्लोइंग हो जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना ये अंदर तक जाकर आपके चेहरे की खूबसूरती को निखारने में काम करता है। और अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे तो ऐसा नहीं कि भाई ये लड़कियां लगा सकती हैं, लड़के नहीं लगाएंगे, लड़के लड़कियां सभी लगाने वाले हैं। और ये आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए, अपना अच्छे से फेस वॉश कीजिए और फिर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है। तो रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है। पाकिस्तान में 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि विटामिन ई बीट से तैयार किए गए हैं तो उसी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल होती है। तो इतना अच्छा और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा और जनाब जब आपको रिजल्ट्स मिल जाए अच्छी वाले वो भी 2 रातों के इस्तेमाल से तब आप मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ जी हमें रिजल्ट्स मिले। और अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो साथ ही साथ आप जरूर से डायल कीजिए 03-15-799-0595। ओके जी नंबर डायल करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। और जनाब वहां से जाकर आप परचेज करते जाइए क्योंकि परचेज करेंगे इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप लोगों को खूबसूरतियां मिलेंगी ना। और इसी के साथ साथ जो है ना मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में जो सवाल पूछा है वो भी जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो आप लोगों से सवाल पूछा गया है वो ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है। बिल्कुल जी आप मुझे ये बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है और साथ ही साथ अगर आप जानते हैं तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। आपके मैसेजेस हैं आपके कॉमेंट्स हैं जो कि हम शामिल प्रोग्राम रखते हैं और साथ ही साथ अगर आप हमें जो है वो मैसेज करना चाहते हैं तरीकेकार नहीं पता आपको तो अपना सेल फोन उठाइए बल्कि राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्टार दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और हमें सेंड कीजिए 888-1। ओके जी उसके अलावा जी लारकाना FM 88.8 के पेज पर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। अच्छा यहाँ पर फहीम शेख कहते हैं सदरा मुझे बताइए तो कुजा मन कुजा का मतलब क्या होता है। तो कुजा मन कुजा का जो मतलब है वो है आप कहाँ और मैं कहाँ, यानी तू कहाँ और मैं कहाँ। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि आप अगर ये गौर से कलाम सुनते हैं तो आप लोगों को समझ आती है बात। तो एक बहुत ही खूबसूरत ये कलाम तैयार किया गया है जो कि अगर आप लोगों को यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आता होगा तो अगर समझ नहीं भी आता फिर भी आप जो है ना अच्छे से जो है ना वो वाइब हासिल करते हैं और आपको अच्छा लगता है सुनकर। तो बिल्कुल जी ये एक ऐसा कलाम है जो अगर आप जितना भी सुनते हैं तो आप कभी भी जो है ना ऐसा महसूस नहीं करते कि भाई ये क्या आप चला रहे हैं, ये क्या हम सुन रहे हैं, बल्कि आप जितना सुनते हैं उतना आपको अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ ये बहुत एक प्यारा सा कसीदा किसी ने मुझे फरमाइश कर दी थी शायद तो हम यहाँ पर सुनते हैं और साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

हमारे साथ हैं यहाँ पर. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी वेंसडे आफ्टरनून. माय स्वीट बेस्ड आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं फजीला सिंधी? और आपको खुश आमदीद कहा जाता है, प्रोग्राम सुन रही हैं आप हमारा. और उसके अलावा ये हमारे साथ मौजूद हैं जी कश्यप. वालेकुम अस्सलाम कहती हैं आप ही. आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून. आप ही नोहा तो सुनवाना. चले मैं कोशिश करती हूँ, बिल्कुल आपकी फरमाइशें लगाएंगे. और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम कहते हैं बाजी. व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है. और सुनाओ क्या हाल है बाजी? मैं ठीक भाईजान, आप बताएं आप कैसे? और चाचा खालिद जोड़े जो कहते हैं मुहर्रम का मतलब है. ओके वेरी नाइस. और उसके अलावा आपने फरमाइश कर दी है

इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ कहते हैं बाजी मुहर्रम का मतलब है बिल्कुल सही और कहते हैं कि मेरी फितरत में नहीं है किसी को भूल जाना साहेब, भूलते वो हैं जिनको अपने आप पर गुरूर होता है। क्या बात है इमरान भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये हमारे साथ है ओके जी गोट नबीदाद बम्बरो नारी खां इमाम डिनो बम्बरो भाई हमारे साथ ये प्रोग्राम तमाम नारी सा भेण भली तवा खुश हो। जी जी बिल्कुल मां खुश आए तां बुधा की आयो ठीक ठाक आयो। इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मुझे प्यारी दिलबर दोस्त शाह आलम ठीक है तां बुधा की आयो। और हैं जी हमारे साथ इमरान भाई कहते हैं

0: इट्स स्टार वगेती खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वणो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो अई उन दौरान شدید जिस्मानी कम खा पासो करियो बारन बुजुर्गन अई बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो अई महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: आप सुन रहे हैं
3: GFM 88
2: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक्सपीरियंस लाहौती लाइव सेशंस।

सोने बगैर सुकून नहीं आता अल्लाह सच्ची बता रही और बिलाल अली कहते हैं आज हम लोगों को उनके कपड़ों से पहचानते हैं लेकिन मौला अली अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि इंसान को उसके दिल से पहचानें बिल्कुल जी ओके जी संजय जयपाल हमारे साथ मौजूद है संजय जयपाल आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है और साथ साथ हैं जी किशोर भाई के अधी मथे भी शिकायतों नियो था हाँ बिल्कुल नींद आई कहाँ की का शिकायत है बुधायो तो ताज शिकायत भी पहुंचाईंदा सी और बिलाल अली लिखते हैं कि मुहर्रम हराम हमें करबला की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने हक सब्र और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की करबला हमें जुल्म के सामने डट जाने और सच का साथ देने और अल्लाह की रजा पर राजी रहने का दर्श देती है लिहाजा इस मुकद्दस महीने का एहतराम करें और अपनी दुआओं इबादत और अच्छे इखलाक के जरिए मुहर्रम हराम की बरकतें हासिल करें और करबला हमें सिखाती है कि हक की खातिर कुर्बानी दी जाती है मगर हक का सौदा नहीं किया जा सकता बिल्कुल जी

ओके जी, ये बहुत ही प्यारा सा कसीदा हमने लास्ट में लगा लिया है, जिसकी हमें फरमाइश एएम अंसारी ने कर दी थी, और मोहम्मद ताहिर लुंड बलोच हमारे साथ मौजूद है विलेज वलीदात खान लुंड नजद सेठारजा से। प्रोग्राम लाजवाब आहे सलाम तमाम जो वने तो सैयद इमदाद अली शाह बुखारी जवार मोहम्मद बचल शंबानी कामरान महेसर अनवर सोलंगी साहब जिनाली चलें, बहुत शुक्रिया।

अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम देखने में भी अच्छी लगती है। हाँ वाकई ये ऐसा जब आप लगाएंगे तो आपको मतलब ऐसा अमीरों वाला फील आएगा, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है वाकई। फेस वॉश की बात की जाए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात की जाए, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।

ओके जी, क्या बात है। और साथ साथ फजीला सिंधी कहती हैं कि डियर सिस्टर, मैं भी फेस वॉश लूंगी स्वीटी, क्रीम यूज नहीं करती, गर्मी है बहुत, सर्दी में लूंगी। चलें ये भी ठीक है, अच्छी बात है, फेस वॉश का आप इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ साथ हमारे साथ हैं जी ये अफहा डेहरी, सऊद डेहरी फ्रॉम नवाब शाह कहते मोल इस्लाम मदद अदी शो तुम जो नाइस आए, थैंक यू सो मच प्यारा बात आज मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पया। और अलमास सोलंगी हमारे साथ हैं, अली वारिस सोलंगी तुम जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पया। ओके जी, सो अज के प्रोग्राम में माँ वहाँ का सवाल पूछो या कि आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक था वो बिल्कुल ये था कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है, तो इसका जवाब जो है वो जवाब दिया, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया। और यहाँ पर टाइम अगर देखा जाए तो आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त हुआ जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी वरी जो है सुभाने थियण वाली है, यानी कि 1 बजे का 3 बजे ताई असा तवा सा डेली गडू दायो, बस जुमे वारे नी असा जी मोकल हुंदी आ है। सो पांजो लाई सरो ख्याल रखदा आई मुखे दुआ में याद रखदा, इते का गलती थी जो को एडो लफ्ज गाले जो को तवा के सुठो न लगो जो तो ने ला माजरत कयो था। सो मोकलानी ना है बाबू सेन सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

सिंधु काबीना नए माली साल की बजट की मंजूरी दई छी। सिंधु काबीना जो वे वजीर मुराद अली शाह की सदारती इजलास। सरकारी मुलाजमन की पगार और पेंशन में वफाक जेतरी 7-7% वाध करण की मंजूरी। पे स्केल रिवाइज थी साल 2022 ए 2025 जो एडहॉक रिलीफ कराए नव पे स्केल 2026 किया वो। वरी वजीर मुराद अली शाह चाहे तो बजट में हर तबके जो ख्याल रखो वो है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायतों से अमल कदे गुर्बत के खात्मे के लिए खास कदम खाया वायान। औरतन की घट में घट उजरत बाबत अहम फैसलो किया वो है। वो वजीर मुराद अली शाह वजन 3 बजे बजट सिंध असेंबली में पेश कर।

0: नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har ni hai josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पहचो शहर पहचो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
2: जीए एफएम 90.8।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: देखिए सिलसिले 2 जनवरी से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के नए माली साल लाइ 3562 अरब रुपये की बजट पेश। पघारुन ए पेंशन में 7% वाद करण 2022 ईस्वी 25 वारा एडाक अलाउंस बुनियादी पघार में जिम करण जो ऐलान। बोरियत जो घट में घट अजूरो 40,000 मां वधाए 43,000 करण जो ऐलान। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करण जो भी ऐलान। केटी बंदर के आलमी बहरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल तवानाई मर्कज बनाने जो अज़म। सालियानी तरक्याती बजट में 298 अरब रुपये की कटौती। गैर तरक्याती बजट में 418 अरब रुपये की वाद की तजवीज। तरक्याती बजट 1018 अरब रुपये में घटाए 720 अरब करण की तजवीज। सूबे के तालीमी शोबन लाइ 620 अरब रुपया रखने की तजवीज दिनी वही। सेहत खाते लाइ 393 अरब रुपया रखने की तजवीज। मकानी इदारों लाइ 155 अरब रुपया रखा वाया। ज़रात खाते लाइ 21 अरब रुपया रखने की तजवीज। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह बजट तकरीब के खिताब करते चयो तो बजट में को भी टैक्स शामिल ना कयो वयो। NFC में सूबे के हकन ते को भी ठाह ना कयो। कौमी इस्तेहकाम लाइ 260 अरब रुपये जो इंतजाम करण ते इतफाक कयो आहे। सिंध में गरीबन लाइ मुफ्त होम सोलर सिस्टम जो ऐलान। स्कीम लाइ 18 अरब रुपया रखा वाया। 275,000 घर के मुफ्त सोलर होम सिस्टम दिनों वो। हारन के भी जदीद मशीनरी इंश्योरेंस जदीद टेक्नोलॉजी ताई रसाई देने जो ऐलान। मुराद अली शाह चयो तो सूबे में 17 लाख घर की तामीर लाइ भी फंड्स जो इंतजाम किया वो है। सिंध की बजट में सूबाई राजधानी कराची की तरक्याती बजट लाइ वडी रकम मुख्तस। मजमूई तौर शहर के 816 मनसूबा लाइ 664.3 अरब रुपया रखने की तजवीज। 110 मेगा मनसूबन लाइ 1 अरब रुपया रखा वाया। 167 जारी मनसूबन लाइ 500 मिलियन मुख्तस। एयरपोर्ट का स्टार गेट तई नव फ्लाईओवर ठहंदो। मलीर हॉल्ट का शाराए फैसल तई राइट टर्न अंडरपास जो मनसूबे बजट में शामिल। रेड लाइन BRT लाइ 13.2 अरब ए येलो लाइन लाइ 3.5 अरब रुपया मुख्तस। गुजर नाले स्ट्रॉम वाटर ड्रेन ए सर्विस रोडन लाइ अरबे रुपये जहा मनसूबा। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लाइ 4.7 अरब रुपया रखने की तजवीज। 6 जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस ए सॉलिड वेस्ट मनसूब लाइ भी रकम रखी वही। K4 पानी मनसूबे ए वाटर सप्लाई निज़ाम की तोसी वारा मनसूबा भी जारी रहंदा।

मलीर एक्सप्रेस वे ते नवा इंटरचेंज ऐं राबता रोड ठाहिण लाइ बि रक़म रखी वई। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह बजेट तक़रीर कंदे चयो त सिंध हुकूमत कराचीअ जी मेगा मनसूबनि ते ख़ासि ध्यानु ॾेई रही आहे।

सिंध जे मादर इल्मनि लाइ बि बजेट में अरबें रुपया रखण जी तजवीज़। कराची यूनिवर्सिटीअ लाइ 3.90 अरब, एन ए डी यूनिवर्सिटीअ लाइ 2.83 अरब, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीअ लाइ 1.99 अरब, डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटीअ लाइ 1.42 अरब, जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटीअ लाइ 1.39 अरब, आई बी ए कराचीअ लाइ 76 करोड़, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटीअ लाइ 75 करोड़, कराची मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटीअ लाइ 59 करोड़, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लाइ 51 करोड़, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ लियारीअ लाइ 41 करोड़, BSU टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स डेवलपमेंट लाइ 39 करोड़ रुपया रखिया विया।

NICVD लाइ 12 अरब, SICVD लाइ 14 अरब, TB कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 93 करोड़, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 37 करोड़, PPHI लाइ 24 अरब, API प्रोग्राम लाइ 24 अरब, इंडस अस्पताल लाइ 8 अरब, किडनी सेंटर कराची लाइ 30 करोड़, हसन सलेमान मेमोरियल अस्पताल लाइ 2 अरब 14 करोड़, प्राइम हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बेरिया टाउन लाइ 20 करोड़, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाइ 3 अरब 50 करोड़, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथोलॉजी लाइ 1 अरब रुपया रखने की तजवीज़।

0: बजट स्पीच तो सुन ले, बजट स्पीच सुन तो ले आप।
1: हर बात इतनी
0: अच्छा
1: है,
0: पहले ये
1: यहाँ पार्लियामेंट
0: में फैसला करे, पहले फैसला कर ले। आप बोले
1: वन वे ट्रैफिक चल रहा है सर, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है। एक असेंबली का माहौल होता है, प्री बजट होती है, दीगर चीजें होती है, सब कुछ बाईपास।
0: अभी देखा नहीं है आपके हाथ में, अभी बजट आया और आपने फैसला भी कर लिया।
1: पूरी रिवायतों को तो पास किया जाए भाई। अगर ऑपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं, पॉलिसी है फिर ऐसे ही चलाते रहे जनाब। आपके पास सक्सेरी थी, आप जो चाहे कर सकते हैं आप करें, फिर आप जो करें, फिर हमारा जो दिल है हम वो करेंगे। हम एहतजाजन इस बजट स्पीच का हम जो है वो बॉयकॉट करते हैं, और हम जो बाकी बातें बजट के आगे आने में जो सूरत हाल बनेगी उसमें करें।

एन एफ सी को सहीफ़ो ना है जेको तब्दील न थी सघे शयूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि। वफाकी वज़ीर राणा तनवीर क़ौमी असेंबली में बजट ते तकरीर कंदे चयो आहे त बजट आवाम दोस्त आहे, अपोज़िशन बिना जवाज़ तनक़ीद करे रही आहे। राणा तनवीर जी तकरीर दौरान पी टी आई ऐं लीगी एम एन एज़ में सख़्त जुमलनि जी ॾे वठे। ॾुखियुनि हालतुनि में नू लीग जी क़यादत मुल्की मैशत खे संभालियो, मुख़ालिफ़ बि बजट जी वाखाण करे रहिया आहिनि। सुद समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारड़ ऐं ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानीअ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ चयो त पी टी आई मुल्की मैशत जो ॿेड़ो ॿोड़ियो नू लीग तारियो आहे। बिलाल अज़र कयानी पारां बजट पघारदार तबिके लाइ रिलीफ़ करार।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस तड़ियाई उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस तड़ियाई तुझे उठड़े अदान करे खैर धनी ये दुआ थी घुरां पांजा हड़ा धनी तुझे उठड़े अदान करे खैर धनी ये दुआ थी घुरां पांजा हड़ा धनी शल तो के बिडे रब उम्र घनी जोरो जल्द पहुंचाए जाए दिल पर जो उठी तरस सजाए वगोनी गरजो उठी तरस सजाए वगोनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस सजाए वन पहुंचंदे जाते वन्यनो थई मुझी कैल सदा के मन्यनो थई वन्य पहुंचंदे जाते।

गगजो ओठी तरस सजाय भगोनी गरजो ओठी तरस सजाय भगोनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाय चयो ओठी पुत्र अहवाल तदस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठी।

हर हर जो कोठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांज नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए चयो साईं सुगरा नाम अथन अबो बाबा हुसैन इमाम अथन चयो साईं।

नवर जो ओठी तरस सजाए भगोनी घर जो ओठी तरस सजाए भगोनी घर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज बचड़िया जान जद बुधन लगो ओठी बे अख प्यार थी रोन लगो लफ्ज बचड़िया।

आचवण लॻो मां गुलाम हुसैन जे दर जो कोठी तरस सॼाए वॻुनी घर जो।

0: गरजो कोठी तरस सजाए वगोनी गरजो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए कोठी तरस सजाए वगोनी गरजो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM FM
1: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ऐं शानदार करियर मौकियो पेश कयो वञे थो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ऐं जिम्मेवार उम्मीदवारन खां दरख्वास्तूं तलब कयूं वञनि थियूं जीए एफएम एक अहिड़े प्रोफेशनल फर्द जी ॻोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप ऐं ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मज़बूत सलाहियतूं रखे ऐं इदारे खे बहितर अंदाज में अॻिते वधाए सघे ख़्वाहिशमंद उम्मीदवार पंहिंजी सीवी व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अॼु ई अप्लाई करियो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: ॾाढो सुठो
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज

ਪੀਆ ਨੱਥੀ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਠੀ ਆ ਉਸਤੇ ਅਸਗਰ।

0: to present a rupees 3.56 trillion, including a development outlay of rupees 72.75 billion, with no new taxes, budget 2026-27 of the government of Sindh for the 13th time, including 11 consecutive budgets. Sir, I'm proud to announce that the Sindh government is going to undertake the KT Bandar Maritime and Economic Corridor. I'm pleased to announce that the government of Sindh has initiated the process for establishing the Sindh International Financial Center as a world-class platform for investment, finance, innovation, and dispute resolution.
1: सिंध के नए माली साल ला 3562 अरब रुपये की बजट पेश 36 अरब का जो खसारो हों मुलाजमन की पघार पेंशन में 7% वाध जो ऐलान औरतन जो घट में घट अजूरो 40,000 मां 43,000 रुपया कयो वयो 2,75,000 खानदानन के मुफ्त होम सोलर सिस्टम देने वाली स्कीम भी मुतारिफ सालानी तरक्याती बजट में कटौती तरक्याती बजट 1,018 अरब में घटाए 980 अरब रुपया मुख्तस कई वही वफाक से तय थियल मुआदे तहत तरक्याती प्रोग्राम 575 अरब रुपये में घटाए 400 अरब रुपया कयो वयो गैर तरक्याती बजट में 418 अरब रुपये की वाध कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने जो भी ऐलान केटी बंदर के आलमी बहरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल तवानाई मर्कज बढ़ाने जो अज़म वडे वजीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे तो को भी नॉन टैक्स शामिल ना है एनएफसी में सूबे के हकन ते को भी ठाह ना है कयो
2: ते 8% सुपर टैक्स लागू प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्रोमोटर्स ते फी स्क्वायर यार्ड 100 रुपया इंश्योरेंस एजेंट्स ते 10% टैक्स लागू वे वजीर सिंध फाइनेंस बिल सिंध असेंबली में पेश कर छो री इंश्योरेंस सर्विसिस अदावती सर्विसिस इंश्योरेंस एजेंट्स ब्रोकर्स ते टैक्स लागू लीगल सर्विसिस टैक्स कंसल्टेंट्स रिपेयर सर्विसिस ब्यूटी फिजिकल सर्विसिस टैक्स के दायरे का बाहर
1: शोबे 20 अरब सेहत लाइ 393 अरब रुपया रखने की तजवीज़ अमुन अमान जेलन पुलिसिंग लाइ 216.5 5.73 अरब कानून पार्लियामानी मामल लाइ 27.5 5.65 अरब ज़रात लाइ 38.5 2 अरब लाइव स्टॉक फिशरीज लाइ 11.5 6 अरब रुपया रखा वाया आपाशी शोबे लाइ 41.5 1 अरब मकानी खाते लाइ 201.5 3.9 अरब सुध समा खाते लाइ 10.5 8.5 6 अरब रुपया मुख्तस स्कूल एजुकेशन की प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लाइ 446.9 5.8 अरब रुपया मुख्तस कॉलेज एजुकेशन लाइ 41.5 1.4 7 अरब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8.5 1 8 अरब रुपया रखा वाया
2: सिंध के मुख्तलिफ़ खातन में 864 नई असामियों पैदा करने जो ऐलान बोर्ड मुतासर करने की बीहर तामीर लाए 5.5 2 अरब पुठते पैल तबकन की जिंदगी बेहतर बनाने लाए 13.5 6 अरब रखने की तजवीज बेनजीर हारी कार्ड लाए 2.5 5 अरब सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाए 2.5 2 अरब रुपया मुख्तस
1: एनआईसीवीडी लाइ 12 अरब एसआईसीवीडी लाइ 14 अरब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 93 करोड़ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 37

0: करोड़, पीपीएचआई लाए 24 अरब, एपीआई प्रोग्राम लाए 24 अरब, इंडस अस्पताल लाए 8 अरब, किडनी सेंटर कराची लाए 3 करोड़ रुपया मुख्तस, हसन सलेमान मेमोरियल अस्पताल लाए 2 अरब 14 करोड़ रुपया रखा गया, प्राइम हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बेरिया टाउन लाए 20 करोड़, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाए 3 अरब 50 करोड़ रुपया मुख्तस, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथोलॉजी लाए 1 अरब रखण की तजवीज शामिल।
1: सिंध जी बजट में सूबाई राजधानी कराची के तरक्याती बजट लाए वड़े रकम मुख्तस, मशमूई तौर शहर की 816 मनसूबन लाए 664.5 अरब रुपया, मनसूबन लाए 1 अरब रुपया रखा गया, 167 जारी मनसूबन लाए 500 मिलियन मुख्तस, एयरपोर्ट का स्टार गेट तई 9 फ्लाई ओवर टो, मलीर हाल्ट का शाहराह फैसल तई राइट टर्न अंडर पास जो मनसूबो भी बजट में शामिल, रेड लाइन वीआरटी लाए 13.5 अरब, येलो लाइन लाए 3.5 अरब रुपया मुख्तस, गुजर नाले स्टोरम वाटर ड्रेन सर्विस रोडन लाए 1 अरब रुपयन जा मनसूबा, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज 4.5-30 अरब रुपया रखने की तजवीज, 6 जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन सॉलिड वेस्ट मनसूबन लाए भी रकम रखी वही, K4 पानी मनसूबे वाटर सप्लाई निजाम की तोसी वारा मनसूबा भी जारी रहंदा, मलीर एक्सप्रेस वे ते नवा इंटरचेंज राबता रकम रहे, वजीर माद अली शाह बजट तकरीर कदे तो सिंध हुकूमत कराची के मेगा मनसूबन से खास ध्यान दई रही है।
0: सिंध के नए माली साल की बजट में सब्सिडीज ला 133.5 अरब रुपया, कर्जन व्याज की वापसी लाए 54.5 अरब रुपया, जिले तरक्याती प्रोग्राम लाए 44 अरब, आलमी सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 384.85 अरब रुपया रखने की तजवीज, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम लाए 76.58 अरब, सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाए 29 अरब रुपया रखा वाया, कणक की खरीदारी लाए 80 अरब, सिंध वेट ग्रोवर सपोर्ट प्रोग्राम लाए 43 अरब रुपया मुख्तस करण की तजवीज।
1: सिंध की मादर इल्म भी बजट में 1 अरब रुपया रखने की तजवीज, कराची यूनिवर्सिटी लाए 3.9 अरब, एनएडी यूनिवर्सिटी लाए 2.83 अरब, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाए 1.99 अरब, दाऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी लाए 1.42 अरब, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी लाए 1.39 अरब, आईपीए कराची लाए 76 करोड़, सिंध मदरसा यूनिवर्सिटी लाए 75 करोड़, कराची मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी लाए 59 करोड़, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लाए 51 करोड़, बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ लियारी लाए 41 करोड़, बीएसयू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स डेवलपमेंट लाए 39 करोड़ रखा गया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार कैरियर मौको पेश कयो वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन, व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हाय सुगरा

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: trillion, including a development outlay of ₹72,750 billion, with no new taxes. Budget 2026-27 of the government of Sindh, for the 13th time, including 11 consecutive budgets. Sir, I'm proud to announce that the Sindh government is going to undertake the KT Bandar Maritime and Economic Corridor. I'm pleased to announce that the government of Sindh has initiated the process for establishing the Sindh International Financial Center as a world-class platform for investment, finance, innovation, and dispute resolution.
1: सिंध जे नए माली साल लाइ 3,562 अरब रुपयनि जी बजट पेश, 38 अरब खां वधीक जो खसारो हूंदो। मुलाज़िमनि जी पघारनि ऐं पेंशन में 77% वाध जो ऐलान। फोरियतनि जो घटि में घटि उजूरो 40,000 मां 43,000 रुपया कयो वियो। 75,000 खानदाननि खे मुफ़्त होम सोलर सिस्टम ॾियण वारी स्कीम मुतारफ़। सालियाने तरक़ियाती बजट में कटौती, तरक़ियाती बजट 1,018 अरब मां घटाए 980 अरब रुपया मुख़्तस कई वई। वफ़ाक़ सां तय थियल माहिदे तहत तरक़ियाती प्रोग्राम 575 अरब रुपयनि मां घटाए 400 अरब रुपया कयो वियो। गैर तरक़ियाती बजट में 418 अरब रुपयनि जी वाध। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर क़ाइमु करण जो ऐलान। केटी बंदर खे आलमी पहिरीं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल ऐं तवानाई मर्कज़ बणण जो अज़म। वरी वज़ीर मुराद अली शाह चयो त को बि नओं टैक्स शामिल नाहे। NFC में सूबे जे
2: सिंध में 50 करोड़ रुपयनि खां वधीक ज़रई आमदनीअ ते 8% सुपर टैक्स लागू। प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऐं प्रोमोटर्स ते फी स्क्वायर यार्ड 100 रुपया, इंश्योरेंस एजेंट्स ते 2% ऐं इंश्योरेंस ब्रोकर्स ते 3% टैक्स लागू। वॾे वज़ीर सिंध फिनांस बिल सिंध असेंबलीअ में पेश करे छॾियो। री इंश्योरेंस सर्विस, अदावती सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट्स ऐं ब्रोकर्स ते टैक्स लागू। लीगल सर्विसिस, टैक्स कंसल्टेंट्स, रिपेयर सर्विसिस, ब्यूटी ऐं फिज़िकल सर्विस टैक्स जे दायरे खां ॿाहिरि हूंदा।
1: सिंध जी बजट में तालीमी शोबे लाइ 620 अरब ऐं सिहत लाइ 393 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। अमन अमान, जेलनि ऐं पुलिसिंग लाइ 216.5, 537 अरब, कानून ऐं पार्लिमानी मामलनि लाइ 27.5, 565 अरब, ज़रात लाइ 38.5, 22 अरब, लाइफ स्टॉक ऐं फिशरीज लाइ 11.5, 6 अरब रखिया विया। आबपाशी शोबे लाइ 41.5, 1 अरब, मकानी खाते लाइ 201.5, 39 अरब, इतलात खाते लाइ 10.5, 856 अरब मुख़्तस। स्कूल एजुकेशन जी प्राइमरी, मिडल सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी लाइ 446.5, 958 अरब रुपया मुख़्तस। कॉलेज एजुकेशन लाइ 41.5, 214 अरब, यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड्स लाइ 9.5, 417 अरब ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8.5, 18 अरब रुपया रखिया विया।

0: सिंध के मुख्तलिफ खातन में 864 नयू आसामियों पैदा करने जो ऐलान। बोर्ड मुतासिर घरन जी बीहर तामीर लाए 5.2 अरब। पुठते पियल तबकन की जिंदगी बेहतर बनाने लाए 13.3 अरब रखने की तजवीज। बेनजीर हारी कार्ड लाए 2.5 अरब। सिंध पीपुल्स सपोर्ट प्रोग्राम ए पीपुल्स हाउसिंग स्कीम लाए 2.5 अरब रुपया मुख्तस किया गया।
1: SICVD लाए 14 अरब। TB कंट्रोल प्रोग्राम लाए 93 करोड़। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लाए 37 करोड़। PPH लाए 24 अरब। API प्रोग्राम लाए 24 अरब। इंडस अस्पताल लाए 8 अरब। किडनी सेंटर कराची लाए 30 करोड़। हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल लाए 2 अरब 14 करोड़। प्राइम हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बहरिया टाउन लाए 20 करोड़। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाए 3 अरब 50 करोड़। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथोलॉजी लाए 1 अरब रुपया रखने की तजवीज़।

सिंध जी बजट में सूबाई राजधानी कराचीअ जी तरक़ियाती बजट लाइ वॾी रक़म मुख़्तस मजमूई तौर ते शहर जे 816 मनसूबनि लाइ 664.3 अरब रुपया रखण जी तजवीज़।

मेगा मनसूबन लाइ 1 अरब रुपया रखिया विया। 170 जारी मनसूबन लाइ 500 मिलियन मुख़्तस। एयरपोर्ट खां स्टार गेट ताईं नओं फ्लाईओवर ठहंदो। मलीर हॉल्ट खां शाहराह फैसल ताईं राइट टर्न अंडरपास जो बि मनसूबो बजट में शामिल। रेड लाइन BRT लाइ 13.5 अरब ऐं येलो लाइन लाइ 3.5 अरब रुपया मुख़्तस। गुजर नाले स्ट्रॉम वाटर ड्रेन ऐं सर्विस रोडनि लाइ 80 अरब रुपयनि जा मनसूबा शामिल। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लाइ 4.7 अरब रखण जी तजवीज़। 6 जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन ऐं सॉलिड वेस्ट मनसूबनि लाइ बि रक़म रखी वई। K4 पाणी मनसूबे ऐं वाटर सप्लाई निज़ाम जी तोसी वारा मनसूबा बि जारी रहंदा। मलीर एक्सप्रेस वे ते नवां इंटरचेंज ऐं राब्ता रोड ठाहिण लाइ बि रक़म रखी वई। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह बजट तकरीर कंदे चयो त सिंध हुकूमत कराची जी मेगा मनसूबनि ते ख़ासि ध्यानु ॾेई रही आहे।

0: सिंचन नए माली साल जी बजट में सब्सिडीज लाए 130.54 अरब रुपया, कर्जा नए ब्याज की वापसी लाए 54.25 अरब रुपया, जिले तरक्याती प्रोग्राम लाए 44 अरब, आलमी सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 384.825 अरब रुपया रखण की तजवीज, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम लाए 76.582 अरब, सिंध इस्टेनबल डेवलपमेंट गर्ल्स मेगा रिथा लाए 29 अरब रुपया रखा व्या, कणक की खरीदारी लाए 80 अरब, सिंध वीट ग्रोवर प्रोग्राम लाए 43 अरब रुपया मुख्तस करण की तजवीज।
1: सिंध के मादर इल्म भी बजट में 80 अरब रुपया रखने की तजवीज, कराची यूनिवर्सिटी लाए 3.90 अरब, एनएडी यूनिवर्सिटी लाए 2.83 अरब, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाए 1.99 अरब, डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी लाए 1.42 अरब, जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी लाए 1.49 अरब, आईबीए कराची लाए 76 अरब, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी लाए 75 अरब, कराची मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी लाए 59 अरब, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लाए 51 अरब, बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लियारी लाए 41 अरब, बीएसयू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स डेवलपमेंट लाए 39 अरब रुपया रखा वाया।

0: जंहिं नए वाली साल जी बजट में रेंजर्स लाइ 6 अरब 2 करोड़ रुपया ऐं एफ सी लाइ 1 अरब 41 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया। सिंध पुलिस जो जांच शोबो मज़बूत बणाइण लाइ 217 ASI जी भर्तीअ लाइ 5 करोड़ 17 लख रुपया रखिया विया। सिंध पुलिस लाइ जदीद हथियारनि जी ख़रीदारी लाइ 5 अरब 84 करोड़ रुपया मुख़्तस।
1: बजट स्पीच तो सुन लें, बजट स्पीच सुन तो लें आप।
2: बात इतनी
1: अच्छा, पहले ये
2: यहाँ पार्लियामेंट
1: में फैसला करें,
2: ट्रेजरी में
1: पहले फैसला कर ले, आप बोले।
2: वन वे ट्रैफिक चल रहा है सर, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है। एक असेंबली का माहौल होता है, प्री बजट होती है, दीगर चीजें होती है, सब कुछ बाईपास।
1: अभी देखा नहीं है आपके हाथ में, अभी बजट आया और आपने फैसला भी कर लिया।
2: पूरी रिवायतों को तो पास किया जाए भाई। अगर ट्रेजरी बेंचेस हैं तो ऑपोजिशन की भी बेंचेस हैं, ऑपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं। मगर अगर नहीं सुनने की पॉलिसी है तो फिर ऐसे ही चलाते रहे जनाब। आपके पास अक्सरियत है, आप जो चाहे कर सकते हैं आप करें, फिर आप जो करें, फिर हमारा जो दिल है हम वो करेंगे। हम एहतजाजन इस बजट स्पीच का हम जो है वो बॉयकॉट करते हैं, और हम जो बाकी बातें बजट के आगे आने में जो सूरत हाल बनेगी उसमें करते हैं।

0: वॾे वज़ीर जी बजेट तकरीर शुरू थींदे ई एम क्यू एम समेत अपोज़िशन जो गोड़ मेंबर्स जे ऐवान में नारेबाज़ी सबब वॾे वज़ीर खे बजेट तकरीर रोकणी पइजी वई। अपोज़िशन लीडर अली कुर्शेदी जो चवणु हो त हुकूमत बजेट तजवीज़ुनि में शामिल न आहे कयो, एहतजाजनि बजेट तकरीर जो बायकॉट कयूं था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौको पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वन थियूं। GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है, देर न करो, अभी अप्लाई करो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज। सकरंट की हो तो आवाज भी सकरंट की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.8।